तेरे दर्शन कीते। ए रविदास इस आस ते बैठा है कदी ना तेरे दर्शन हो संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे ओ फिर दुनिया दे राग रंगा वल धन दौलत वल कि

कि सब कुछ है जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनने वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे भगत कबीर साहब वाले। कबीर साहब कहते ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मना विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मन दे। पति कहता है ते घरवाली जी करके अगू बोलती सत वचन कह या घरवाली कुछ कहती है ते अगू पति उहदी गल का मान रखता। इस कथा को सिख्या लै जिन्हों मार मार के जिदी पोता वर्गी शक्ल बना दीती उन्हां वर्गा जीवन जीवना है कि भगत कबीर और माता गुरी वर्गा जीवन। ये तो हुण तुहाडे हथ है जी करके बुलाओ ते जी करके बोलो। सत वचन रखांगे ते घर विच सुख है। अगर एक कहे ते दूसरा अगू आकड़े तू कौन होना मैनू कह ते कलेश शुरू। ते जे एक दूसरे दा प्यार नाल कहना मनांगे ते स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं साडा।

बचा रहे हो। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अगो नू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिरवाए। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा ब्याह कर दिता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खवाएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरे आकर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चुगली पा ली, चौपड़ी पा ली, पर अजमान ढाढा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा ते की दुनिया में

उस हाथ ने पकड़िया तो एक आवाज आई, रविदास तेरी बेटा गंगा बाई ने प्रवान की थी, आपको सदा

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। आप माता जी में मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख होगी आप। अजकल के लोग दोहरी जिंदगी जीते, उत्तों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। उत्तों दिखावा इना के देखने वाला ये कवे कि ए दे वर्गा कोई गुरमुख है ही, ए दे वर्गा दानी कोई, ए दे वर्गा पुन्नी कोई। ते अंदरों अंदरों लालसा ऐसी कि जे वास चले ते सारी दुनिया लुट के खा जाए। इथों तक देखे है कि लोग धर्म के नाते भी ठगियां कर दी, थोड़ा जहा दान पुन कर दिता लोगों को दिखाने वास्ते ते बाकी सारा कुछ आप सांभ ले। वड्डियां वड्डियां उगराइयां भी होती हैं, थोड़ा जहा लोग लगाते ने धर्म के नाते ते बाकी आप सांभ ले। धार्मिक स्थानों का भी हाल ते धार्मिक लोग

तेरे तो पहला भी लोग बड़ा कुछ जोड़ गए, जोड़ते ही रह गए, नाल तो कुछ नहीं रह गए, जोड़े आए थे ही रह

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, पगड़ी ओही हालत ते पुछ दे ने रवदास, मैं तेरे एक पारस दे गया सी। ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं, जिथे रख गए सी उथे पिया होगा, आखो सतनाम सिद्ध। वो पारस दरवाजे दे नाल खोल गया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम सिद्ध। प्रिख्या लैन आए सन, समझ गए भगत ने माया ते काबू

जिस दिन महात्मा गए उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते अपना आसन झाड़ते ने पांच सोने दिया मोहरा निकल दिया उन्हां मोहरा नूं ठीकरियां मिट्टी समझ के एक पासे सुट देंदे जद मोहरा दा ढेर

उस परमात्मा ने मेरे पुत्र बख्श लिया है ते मैनू हुण आके आ दियो मैं सेवा कर। सोहने मंदिर मकान बन गए। भगत रविदास की जय जयकार होण लग पई। पर सत्संग इह समां किहड़ा सी? एक ये भी कौड़ा सच है, वो समां सी जद कोई नेमी जात का मंदिर नहीं सी जा सकता, कोई पूजा नहीं सी कर सकता। एक उस वेले की कथा। अज भी कई स्थान ऐसे हैं जिथे नेमी जात के स्टोर कास्ट

जेड़े सिर ते कुंडलां वाले वाल बना दे, स्वार स्वार के पगा बन दे, ना सिर रहना है ते ना ही ए शरीर रहना है।

ऊंचे मंदिर सोहना कार सुंदर नारी सोहना रूप सोहनी कारवानी इस शब्द को यह ना समझना कि दुनिया तिया पुत्र कारोबार छड़ के बह जाइए नहीं पानी यह कहती है कि सब कुछ है पर इस सब कुछ ना समझ क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का नाम ये चीजा ते कदी भी तेरा साथ छड़ जाने गियां पर परमात्मा वो कदी साथ नहीं छड़ना इन चीजा विच रह के जरा सिमर

समय ना नहीं कि शब्द पूरा पढ़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चलना भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहते ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहने लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्हां पंडितां नु कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जिहड़े पहला निंदिया करदे सन ओही कहन लग पए भगत रविदास वर्गा ते भगत ही कोई नहीं आखो सतनाम सिंह है माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने चितौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और अज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा ते फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल विच

कि मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा ये भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं, मेरा बहना उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हा जिन्हा ने तेरी भगती कीती, जिन्हा जिन्हा ने तेरी आराधना कीती, जिन्हा जिन्हा ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालक

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगिस करते जोगा, लाख पोगिस भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बारिया, तेरा अंत न पारा

टंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावारिया, रोके रुगेले मग देश के मंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालित है, गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे, गुन गावे।

दोजा तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्व धन तम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बहरिया तेरा

एक प्रकरण चल रहा है यो 2004 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा 400 साल प्रकाश दिवस आ रहा है उनु समर्पित 6 विशेषताएं गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां पर एंड नहीं समुद्र दे किनारे कन्नां दी कोई होर चुभी मारे होर कढ़े

20 24 बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथे मोए बचाव सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेव

सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आधान एक है अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिवगुन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के

करा कर तारा पर जा दर्द तब दे अपारा जब आकर कठो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार जलम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमान महामूड कछ।

आप अपनी बुद्ध है जेती पर्ण तिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहबे सिजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं तूपा अंड जेर जसेत जकीनी उत्पुछ खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संकरे कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आज गात स्वरूप स्वयंपव अमृत छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख त है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट ने आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हे सवार काल फास्ते तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा दर्द दुष्ट दोखते।

तीन पैसे पल्लियों खोल के हाथ विच फड़ ले नी। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नू खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी।

हाथ जोड़ के कहने लगा, सच्चे बादशाह मेरा जन्म मरण स्वार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पया ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा, हां जे तू कवें हेरे जवारात महल माड़ियां

बस जन्म मरण स्वार दे। जहांगीर कहन लगा जन्म मरण स्वारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण स्वारन वाला दूसरे तंबू विच है, मेरे कोलों हाथी घोड़े मांगो।

मैनू ते परमेश्वर दी मेर दी निगाह चाहीदी ते वापस मुड़ पे तंबू दे बाहर आया। अचानक ख्याल आया एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया जेड़े तीन पैसे रख के मत्था टेकिया सी वो तीन पैसे चुप के ते फिर

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने।

स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीण लई, ज्यो पानी पीण लगदा तां इस दे मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरनते दोए मुए, दोए मरनते चार, चार मरनते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही छप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ के छप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरन ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

सो अंत सो वह अनंत कटकट व्याप रहा भगवंत तन महे आकाश प्या सर्व लोक पू

राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे कहत दीवाजा हक हक अगा गुर गोविंद सिंह शाहे शाहन शाह गुर गोविंद सिंह हक हक

आओ सखा तुम पाए महा दुख आए इते ना किते दिन खोए इना दिन किथे रे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा भर के ले आई जिसले चरण धोन लगे आओ सखा तुम पाए महा दुख आए इते ना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा निद रोए नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दिते। फिर आखन लगे सुदामे सुनिया भी तेरा विआह हो गए महाराज बाल बच्चे भी हैं सुखी हैं तुहाडी कृपा है। कहन लगे सुदामिया जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया कुछ दिता नहीं चुप रहे अगे होके भगवान कृष्ण ने वो चावलों की पोटली जिसले कड़ी आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद है भक्त दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा ये मेरे भक्त दा प्रसाद है। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतियां दुख सुख फोले ते एक दिन सुदामे ने बेनती कीती भगवान हुण आ गया बख्श बड़े दिन हो गए इत्थे रहिंदिया हुण घर जावां वापस बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा। कहन लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे अजे साडा दिल नहीं परे आ पुराना प्यार चेते आ गए जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन ओ दिन जड़े कठिया गुजारे सन ओ दिन नहीं भुलदे सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन इस करके कुछ दिन ता रहो। सुदामे ने हाथ चा जोड़े भगवान हुण आ गया बख्श ते कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाव। ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है पता नहीं की कुछ बख्श वड़ियां दा कम है दान देना छुपा के दे होशियां दा कम है दान देना दिखा के देना आख्या है वड़े लोग हन शायद कुछ छुपा के देना चाहते होण भी प्यार तो बड़ा कीता है। जिस वेले बाहर आए सुदामे नूं छड़न वास्ते

छा नाम अधारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग।

गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां।

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है, हम तैसी किरत कमाई। As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaav kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai, mohe ant laptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaanai, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kareem, har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo deen ke date, mera gun ab gun na vichar.